लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नू आज पाछा बैठे सन। लगी बरसन

अपनी शक्ति नाल वो जेड़े लोटे वेच लोग पैसे पा रहे सन वो लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने

जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उतार रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात है,

करके उड़न पंखी। भाई साहब कहंदे ने कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर करके

प्रभु दे विछोड़े दा डंग लग जाए। कबीर जी कहंदे ने लाजमी ओ बंदा मर जाए, पर विछोड़ा महसूस होवे से पखंड ना करदा फिर। मरण दा मतलब है अपने आप नू जिंदा ही मार छड़ना। जिसनू आख्या मोह मरने का चाव, वो कोई शरीर त्यागण वाली गल नहीं, पर हो सबन की रेंड का सारिया की रेंड बन जाना। इतना अपने आप नू मार छड़ना। तो कबीर जी आखदे ने अवल ते मनुख जिंदा रह ही नहीं सकता, पर जे सियाणा बनिया होए ते फिर उसका ते कोई इलाज नहीं, कोई गल नहीं। पर कबीर जी एक गल होर आखदे ने, जे जिंदा रह भी जाए

माफी चाहना पानी है नहीं किधरे। बड़ा गुस्सा चढ़िया, आखिर यह बंदे नूं क्रोध ही आवेगा। कह लगा पानी है नहीं, कैसा बहाना है, खूज पानी है नहीं। तन गुरु नानक कहिंदे ने नहीं, तला तो लै आउणा सी कि हजूर उथे भी नहीं, और निकम्मिया उथों परा दरिया तो लै आउणा सी। तन गुरु नानक कहिंदे ने हजूर उथे भी तां नहीं, नेड़े तेड़े पानी किधरे भी तां नहीं, मैं कित्थों लै आउंदा। इन्हें जनू गली च हाहाकार मची दी आवाज पई, घबरा के उठिया, पुछिया की गल। कहिंदे ने सारे नगर च पानी किधरे नहीं, पानी दी तो पानी बिना किवें जीवांगे। घबराहट पैदा होगी, सियाने बंदे सिर जोड़ के बैठे जो बुजुर्ग सन जिम्मेवार सन, उन्हें कहा गल की बन गई, पानी किधर गया। कोई उन्हां विच सी थोड़ा जिहा रब दे भय वाला, वो कह लगा मैनू जापदा है किसे साई लोक दी किसे रब दे बंदे दी खुनामी साथों हो गई है, तां इह सजा साडे सामने आई है, पानी दी बूंद बूंद नूं असीं तरस के मर जावांगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नेड़े तेड़े किधरे पानी नहीं, किसी की खुनामी बेदबी साडे कोलों हो गई जापदी। एक विचों जिहड़ा बड़ा चंचल सी कहण लगा खुनामी की गल तां करो जी आपां कोई नेकी की गल कदे कीती होवे, आपां मार कुट के लोकां नूं उहनां कोलों वगारा लैंदे आ, कम लैंदे आ, पता नहीं इहनां विच कौन कौन की है। कहण लगे नहीं, जरा गौर नाल विचारो, वह पठान जिन्हें खरीद के गुरु नानक नूं लिआंदा सी दो घोड़िया तो, कहण लगा एक बंदा मैं राती लिआंदा है खरीद के, बंदा बड़ा ही धीरज वाला है, बड़ा ही सील है, बड़ा ही आग्ञाकार है, ते जे उहदे चेहरे वल वेखिया नहीं जाता, उहदे नेत्रां वल वेखिया नहीं जाता, जापदा कि गलती नाल मैं किसे रब लोक नूं तां नहीं गुलाम समझ के खरीद ले आया। वह कहण लगे विखा सानूं, चले आ गए। उन्हां च जिहड़ा बंदा आगू सी बुजुर्ग सी कहण लगा बाबा पानी नहीं। धन गुरु नानक नूं कहण लगा साईं लोका पानी नहीं, पानी तो बिना किवें चलेगा। धन गुरु नानक कहण लगी अगे वी बंदियां दा लहू पींदे जी हुणी पीती चल, जे इसे नाल तुहाडा कम सरदा है, हुण इहो जी गल कदे किसे गुलाम ने कहणी सी। धन गुरु नानक ने झटका दे के जगा दिता, उन्हां वेख्या वाकई गुलामां वाली कोई गल नहीं, इह तां पैंदा है उत्तों दी। कहण लगे बाबा मर जावांगे। धन गुरु नानक कहण लगे जीण जू नहीं देंदे, मरो किसे नूं जीण वी तां नहीं देंदे। किन्निया भैणां ने वीर तुसीं कोहलुआं नाल जो छड्डे, किन्निया मावां दे लाड़ले पुत्तर तुसां हलां अगे ला छड्डे, किन्निया सुहागणां दे सुहाग तुसां मार मार के कोड़े खत्म कर दित्ते ने, चक्कियां ते खरासां ते जो जो के तुसां उन्हां दी रत पी लई, अज तुहानूं अपने जीवन दा मोह जागे है, ख्याल जागे है, लोकां नाल की करदे, सिर नीवे करके बह गए, गल नहीं औड़दी, लोड़वंद भी होवे ना बंदा ते फिर उहदा रुख बदल जांदा। कहण लगा बाबा कुछ कर सकणा पानी दा। धन गुरु नानक कहण लगे इको तरीका, इहनां सारिआं नूं छड्ड दिओ, पानी आ जाएगा तुहाडे वास्ते, निरंकार की प्रसन्नता प्राप्त करो, इहनां दी रूह राजी करो, इहनां सारिआं नूं आजाद कर दिओ। कई भैणां दे कलेजे ठंडे होणगे, कई सुहागणां दे चित राजी होणगे, कई मावां दे कलेजे नूं ठंड पै गई हुंदी, असीस सदका तुहानूं सारे सुख आउणगे, इक पानी दी गल की। हुण उन्हां ने अपना मसला रखिया, कहण लगे बाबा जे इहनां सारिआं नूं छड्डता असीं की करांगे, क्यों कि बाबा साडे कम किवें चलणगे। धन गुरु नानक कहण लगे आप करो, कहण लगे आप कदे कीते नहीं, बैठिया बिठाया हो जांदे ने इस करके। धन गुरु नानक कहण लगे हुण लगदा है पता, अगे तां इह समझदे सां कि इह तुहाडे गुलाम ने, पर हुण पता पै लगदा तुसीं इहनां दे गुलाम जी, तुसीं अपने आलस दे गुलाम जे, इस करके तुहानूं कोई ना कोई चाहिदा असिस्टेंट, सहायता करने वाला, तुहाडे काम चलाउण वाला, तुसीं तां गुलाम तुसीं हो, तुसीं इहनां दे मालक नहीं हो, इह तुहाडे मालक ने जिन्हां बिना तुहाडा सरदा नहीं। हुण तुसीं सोचो, इह कथा होर वी प्रचलन विच सी पढ़ी, कहिंदे ने इक नदी दे किनारे दो रियासतां, इक उस पासे इक उस पासे, इक रियासत दा एरिया रकबा बहुत वड्डा है, उहदी आबादी भी तकड़ी है, उहदी जमीन भी पदरी है, उहदे विचों छोटी छोटी नदियां भी लंघदियां ने, उत्थे पानी धरती विच भी चंगा है, खुशहाल रियासत। दूजे पासे छोटे जे एरिए वाली, छोटे जे रकबे वाली रियासत, उहदे च अद्धा कोई इलाका उच्चा नहीं है, पानी भी घाट है, जमीन भी कमजोर है, ते बंदे भी गिनती च थोड़े। नदी दे दोवे पासे वसण वालियां रियासतां, वड्डी रियासत वाले ने चौथे किन उठना, हमला करना, उहनां दे माल डंगर खोह लैणे, चार बंदे मार आउणे, उहदा नुकसान कर देना। वह छोटी रियासत दा राजा एक दिन अपने वजीरां मीरां नूं इकट्ठे करके बह गया, कहण लगा भी अज मैं फैसला करना, दसो। कहण लगे रोज रोज दी इस मार पैण नालों मैं सोचिया चिट्टा झंडा खड़ा करके उन्हां दी ईण मन लईए, गुलामी उन्हां दी गुलामी कबूल कर लईए, वह वड्डे ने, वह डाढे ने, उन्हां कोल माया भी खुली है, बंदे भी तगड़े ने, उन्हां दे उन्हां कोल साधन बहुते ने,
ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਅਣਖਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਨਾਲੇ ਪੱਟ ਕੇ, ਖਾਲੇ ਪੱਟ ਕੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇੜਿਓਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਪੱਟਣਗੇ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਟਕੋਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਚਾਕਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੱਠਾ ਦੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਰਸੋਈ ਯਾਦ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਵੇਂਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨੀ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਚੱਲ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਘਰ ਵੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ

बाबा फरीद जी ने मनुख नू समय दी कदर करन वास्ते प्रेरणा की थी। सतगुरु कहंदे ने सारियां जूना दा सरताज बना के मैं तैनु संसार विच भेजे। आम बात है कि जेड़ा वड्डा होवे ओदी जिम्मेवारी भी वड्डी हुंदी, वड्डे दी जिम्मेवारी भी वड्डी। साहब कहंदे ने इस धरती में तेरी सिकदारी, वड्डे वड्डे शीं बघेले नथां पाई फिरदा इंसान, बड़े बड़े जरीले नाग पटारियां विच बंद करी फिरदा। सतगुरु कहंदे ने पर तेरा कोई फर्ज भी है, तैनू नाम जपण वास्ते भेजिया संसार विच। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, ए समा है तेरे नाम जपण दा। तां बाबा फरीद ने चेतावनी दित्ती, हे भाई जदों दरिया विच थोड़ा थोड़ा पानी होवे ओदू तां बेड़ा तैयार कर लै ताकि समय नाल तू पार लंघ सके, ते जदों दरिया विच तुगयानी आ गई, तूफान आ गया, दरिया ठाठा मारदा होवेगा, उस वेले मित्रा पार नहीं लग्या जाना, फिर तां डुबण दी गल ही है। इस करके कृपा कर, नाम जप, नाम दा बेड़ा तैयार कर ताकि समय नाल तू भव सागर तर सके। गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी विच बाबा फरीद जी प्रेरणा दे रहे ने, ते सानू चेतावनी कर रहे ने, भाई समय दी

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिस दी मदद कोई नहीं करदा उस दी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करदा, और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करदा है। सात जगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हन तू उन्हां नू वंडन वाला है। सात सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं ए धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नू जानिया है, इस वास्ते संसार विच तू महाराजियां दा महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे संसार नू छड़ के तेरे चरणा विच आया।

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी। ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर की जांदा है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है क्योंकि तू अंतर जामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात सगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदो अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया तां सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए। सुद साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीश चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते। दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती कीती है, असी ए सौदा सस्ता कीता। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी, हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी
बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। इन्हों सिखा दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा देते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। आ सारा सरबंस दान कर देता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सात सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ए अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जावन बार, ए दुश्मना दे कई दलां दे दल नूं मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दी चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा वीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनू रोक के दसो। सात सगत बोलो श्री। अनेकां ही नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई, दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगां लंघ गए। दुश्मन घेरे नू तोड़ छड़िया, तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकता है, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है। यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हुए भाई साहब भाई नंद लाल जी

संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

दुनिया दे मालिक साहिबे दो आलम बानी के बोहित नाम के जहाज साहिब धन गुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिन तो अपनी रचना तो इना बचना दा उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उना जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

दूसरा रस्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत सब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा सब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति भून दे पीछे प्या तड़पता है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है तरले करदा है जो दुनिया करदा है मेरे पातशाह ते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै एदां दा स्नेह कर लै एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

होया बरस पैंदा होया मीं कितना सुहावना लगता है उन्हूं आस लग जांदी है कि हुण स्वाती बूंद भी डिगेगी ते मेरे मुख विच पै जावेगी। अगलियां पंक्तियां विच मेरे सतगुरु सानू समझाउंदे होए प्यारे आ कलजुगी जीवां नूं संबोधित करदे होए सतगुरु आंदे ने हर प्रीत करी जाए एहो मन दीक ऐसा स्नेह कर ऐसी प्रीत कर मन गुरु दे चरणां विच निछावर कर दे भाई।

उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नूं सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नूं पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिन्हां नाम जपिया सिमरन कीता, भावें कोई वड्डा है भावें कोई नीवें, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नूं, नाम जपण वालियां नूं, सेवा करन वालियां नूं मेरे साहिब अपने गल दे नाल ला लैंदे ने। हजूर कहिंदे ने, मान ना कीजै शरण भरी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणां विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आश लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पपिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है। भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

लानी खत्म हो गई। अलंकार मिल थैली हुई है दांते कनिक वखानी, जिवे बहुत तरह दे गहने इकट्ठे करके एक थैली च पा दिए ते कंजने सोना है, फिर उन्हूं कले कले नूं गोखड़ू हार चेनी कुछ नहीं कहिंदा, वो कंजने सोना है। जे गाल दईए ते फिर उन्हूं की कहांगे, मिट गए गहने मिट गए सिर्फ सोना रह गया। साहब कहने जिस वेले मैं अपना आपा मिटा दिता, मैं मेरी मिटा दिती, फिर तेरे नाल मैं इस तरह ही रल गया। कनिक जिस तरह सोने ते गहने का कोई फर्क नहीं, जिस तरह पानी ते पानी दे बुलबुले च कोई फर्क नहीं। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा, कोई फर्क ही ना रह गया, मिट गया मैं तेरे विच रल गया। ते हुण ओ कुछ प्राप्त होया है, प्रगट्यो सहज प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनत बाणी जीवन संगीत नाल भर गए, गुजे संगीत नाल भर गए, अंदर सहज आ गया बाहर शोभा बन गई। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बाणी, कहो नानक नेचल घर बांधियो, गुर दी गुर कीओ बंधानी। गुरु ने ऐसा घर बन दिता है जिहड़ा कदे डिगण डोलण वाला नहीं, कदे टहण वाला नहीं, ऐसे घर दा वासी मैनू बना दिता है, ऐसी अवस्था च पहुंचा दिता है। पर पहुंचया कदों, जद मैं यह समझ लिया।

बाबा फरीद जी सूफी फकीर जिन्हां दी बाणी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने दर्ज कीती है। कहिंदे ने जिन्हां नूं अपनियां वडियाईयां दा कोई बंदा नेक काम करे ओहदी संसार वडियाई करदा, कोई भला काम करे ओहदी वडियाई करदा, ते जे अपनियां वडियाईयां वल वेख के ओह माण विच आ जावे तां साहिब सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी कहिंदी है भई ओह जिवें मूले धारमी पैंदा होवे ता नीवे थां तां नकानक भर जांदे ने, उच्चे थां सुके दे सुके ही रह जांदे ने। ऐदां वडियाईयां करन वाला बंदा रब दियां बख्शां ते रहमतां तों ऐदां वांझा रह जांदा जिवें ओह उच्चे टिब्बे रह जांदे ने।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live.
1: बतावन रहे गुरबिन ज्ञान हो ओ गुरबिन ज्ञान हो।
2: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
3: आसरा उसका आधार था, मैं देख सेवादार हाँ।
2: खुश रहो बाबा जी, खुश रहो।
3: आप उधर ले पी, ओ ले पी। जल पाया परमेश्वर पाया, अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए। सो जल बिन भगवंत न पाइए,
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
3: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मोहे जल लभ रहे हैं, तुहाडे कोल तो हजारे यात्री आते जाते, शायद तुहानु कुछ पता होए।
3: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी दी एक छपड़ी है, ओदे कंडे ते बेरी दा दरख्त है, ते बेरी ते कां बैठदे ने।
3: छपड़ियां ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी, आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
3: चिट्टे हो उड़दे जांदे ने?
2: हां बाबा जी। ते नारी आवाज आ रही से,
4: कागो हंस करे,
3: कागो हंस करे, कागो हंस कर। ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो, सिर्फ गोलवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास?
3: हाँ बेटी। उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही

बादशाह कहण वाले कह छट देने। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा दे बड़ा खंडन कर दिते कि उन्होंने दिल विच कोई भेद सी फर्क सी। बादशाह कहण लगे नहीं मेरा किसे नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल उन्हां तों विछोड़ के जे मैं आखां मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच हां। मैं कहिंदा बई नहीं ओ भी दस रहे ने मैं भी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसी भी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहंदे ने

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा, तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।